0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
5: Budget tight, पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
7: दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे चुप हो जा अपने लाडले फूफा के भतीजे। लोरी
8: लोरी लोरी
7: ए मई लोरी, अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां। ये मर्द भी कर सकते हैं,
8: मर्द जिंदाबाद।

0: ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू,
1: थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो

जुगात सच है भी सच, नानको सी भी सच। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुप है चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुनिया भार, सह स्याण पालक हुए ता इक ना चले नाल।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

रख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब World.com
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
5: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Europe or UK के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन। अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
0: SBI UK is regulated by the FCA and PRA.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
3: Hi, this is Chitranjana Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
4: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय
4: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस खूबसूरत बीचेस सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
5: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
7: 2 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
8: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
9: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
10: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
9: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
9: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now. info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
11: जो कल जन्म हुआ था, वो बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्तु।
12: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV, Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
13: Hi, this is Arbaaz Khan.
14: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
15: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: लाइका गोल्ड, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: Productions, supporting mental health and wellbeing awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: डैड,
5: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Shoaib Alam pesh karte hain Soulful Qawwali ki mehfil, Qawwali Queen Tayyiba Khan ke saath. लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
8: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
9: The wait is finally over.
10: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
9: Power, revenge. और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
12: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर।
9: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 4 days टू गो। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th।
11: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
14: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a gold, traffic and travel.
2: Starting with Honeypot Lane, we've got this ongoing accident investigation work. Both approaches from Morrison's traffic lights to Queensbury Circle saw a closure with diversions for bus routes. Many roads as well through Notting Hill are affected by the Notting Hill Carnival, so delays are expected. This is right throughout. And the A13 into town at Barking, accident investigation work where the underpass remains closed. At River Road, lots of busy traffic in the area. M4 Heathrow Spur Road, stop-start traffic south before the tunnels into the terminals. And Circle Line and Hammersmith and City Line underground station remains closed at Ladbroke Grove due to a prevention measure for the Notting Hill Carnival. And that's the latest traffic and travel.
3: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
0: Yeah.
4: Like a gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
6: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410. साउथ हॉल ट्रेवल. Protected.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: Two businesses.
10: Same town.
9: Same service.
10: One appears on page one of Google.
9: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
9: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
9: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
9: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
12: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
11: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, दी जर्नी ऑफ राम.
12: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: She's back.
14: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर।
15: कैच अनीसा नासिर एज शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर अक्रॉस ग्रेटर लंदन। This is Kajal on Breakfast.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
5: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस, सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154 846.
5: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
9: Hi, this is Chitranjana Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
10: 2 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Leica Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Andy U.
1: This is Like a Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
2: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड. कॉल 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: The wait is finally over.
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से.
6: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
9: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर.
6: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स. जस्ट 4 days टू गो. मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th.
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
10: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
11: बीकानेर वाला परंपरा भी,
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
13: We're finally going home for the wedding.
14: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
13: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
14: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
13: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
14: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
13: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
15: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
16: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
1: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मेरी नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
4: अपना बनाया तेनू,
3: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
9: 2 days to go. UK something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
13: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
14: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब
3: World.com दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like our radio network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: The wait is finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 4 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
9: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में था ये गाना, जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था और उससे पहले आपने सुना राम लखन का फिल्म का गीत तेरा नाम लिया तुझे याद किया, और आपने मेरा नाम लिया मुझे याद किया और मैं हो गई हाजिर। जी हाँ, ये है मंडे का दिन, बैंक हॉलीडे मंडे, और आज आप सब छुट्टी मना रहे हैं, उठ गए हैं या अब भी बेड में हैं? अगर हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन थोड़ा लेजी होना चलता है। जरूरी नहीं कि हर रोज सुबह सवेरे उठकर रोज के काम में लग जाओ, कभी कभी थोड़ा लेजी भी होना चाहिए, रूटीन से थोड़ा हटकर भी काम करना चाहिए, थोड़ा नयापन लगता है, अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसकी परमिशन है, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं ये बात जरूर पक्की करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपके मैसेजेस तो बता रहे हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ऋतु शर्मा हाजिर है एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और एक बजे तक एक नहीं दो नहीं हमेशा की तरह ढेर सारे गाने सुनवाऊंगी, चिंतन भी होगा और सुनवाएंगे आपको आज की ताजा खबरें भी। पर आगे बढ़ने से पहले ये बता दें,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में था ये गाना जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से। और इस शो में आज आप सुन रहे हैं मुझे और मेरा नाम है रितु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपको याद दिला दूं कि आज ही नहीं इस पूरे वीक यानी कि फ्राइडे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। और आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं, तो चलिए न्यूज सुनाने से पहले एक नजर क्यों ना उन पर डाल ली जाए। तो स्वागत है भरत गंगाराम जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने क्या पकवान भेज दिए हैं, क्या बात है, हर हर महादेव आपको भी। आई थिंक भोग लगा रहे कोई पूजा पाठ करके, स्वादिष्ट लग रहा है जो भी आपने फोटो में भेजा है। जय श्री जी, स्वागत है महेंद्र पटेल जी क्रोइडन में हमारे साथ। मिसेस शेख संध्या भाव सर, क्या प्यारी हो आप, कल आपसे मिलने का मौका मिला और कल हम अनूप जलोटा का शो देखने गए थे और वहाँ पर जानते हैं संध्या भाव सर मेथी के पकौड़े और ढोकला बनाकर लाई थी और भूख का समय था और ऐसे भूख के समय में अचानक से अगर आपके सामने कोई मेथी के पकौड़े वो भी स्वादिष्ट वाले और ढोकले परोस दे तो दिल से जो दुआएं निकलती हैं ना वो ही कल मेरे दिल से संध्या आपके लिए निकली। और क्या स्वाद था और कितने प्यार से आप हमारे लिए बना के लाई थी। बहुत मज़ा आया उन्हें खा कर भी और आपसे मिलकर भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संध्या फॉर दैट। और हमारी बहुत प्यारी लिसनर है संध्या, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू प्रज्ञा, कहती हैं बैंक हॉलीडे मंडे, मैं तो अभी अभी उठी हूँ तो ठीक है ना, क्या ज़रूरत है जल्दी से उठ के बैठने की, कहीं जाना नहीं कुछ करना नहीं तो क्या ज़रूरत है सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ के बैठ जाओ, आराम से उठो पूरा दिन पड़ा है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। तो स्वागत है प्रज्ञा आपका, थैंक यू तोची जी एंड राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं हैप्पी बैंक हॉलीडे मंडे, हम खुश हैं क्योंकि पूरे हफ्ते हमें आपको सुनने का मौका मिलेगा, थैंक यू। और इसके अलावा आपने लिखा है कि आज मेरे कैलेंडर पर ये लिखा है कि उत्साह एक बड़ी शक्ति है और जिसके पास ये है वो कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्साह होता है ना वो सभी मुश्किलों को आसान बना देता है। बहुत सही बात आपने सोच समझ कर लिखी है, बहुत खूबसूरत, थैंक यू, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे मृदु जी, अजन जी, शेखर अनन जी एंड ऑफकोर्स हमारे गिरीश जी जो कि इंदौर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। और कल आपका गीत, यस मैंने कहा ना जब आप कोई गाना रिक्वेस्ट करते हैं ना तो मैं याद रखती हूँ और मुझे जब मौका मिलता है मैं उसको बजा देती हूँ, सो थैंक यू गिरीश जी, बहुत धन्यवाद। महेंद्र बाजारिया जी और जितने भी साथी घर में, बाहर, गाड़ी में, काम पे, कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है। इसके अलावा गुरुदेव गांजा आपको भी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी एंड ऑफ कोर्स हमारी मालती जी, सभी का स्वागत है। और चलिए अगला गीत आप सबके नाम करती हूँ लेकिन गाना बजेगा आज के प्रमुख समाचारों के उस पार, क्योंकि अब समय है समाचार सुनने का। Feel good track
1: brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। भारत के मध्य प्रदेश यानी कि चित्रकूट में, मध्य प्रदेश का एक शहर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और सड़कें कीचड़ और मलबे से भर गई हैं। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कल रात्रि नई दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम यादव चित्रकूट विकास प्राधिकरण के आश्रय स्थल पर भी पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातें भी की और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। दरअसल उन्होंने बताया कि सेमरावल और मंदाकिनी नदी में बाढ़ की स्थिति है वो तेज बारिश, ज्यादा बारिश के कारण हुई है और नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, उनके सामान को भी काफी क्षति हुई है लेकिन किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से वार्ता के बाद किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और भारत और उज्बेकिस्तान के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सौदे पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्त लिख से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थायी संबंधों को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायोयेव ने प्रदान किया और प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, क्लीन एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों के संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ये यात्रा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और भारतीय सेना के विमान चालकों ने ननकून पर्वत के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के बीच एक घायल जवान को सुरक्षित निकाला है। और अब कुछ समाचार विदेशों से। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 यानी कि 788 हो गई है और हाइड्रो पावर सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश अभी जारी है। बाढ़ और जमीन के खिसकने के बाद कई इलाकों में सड़कें और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत अभियान जो कार्यक्रम है वो भी प्रभावित हुआ है और सुरंग में फंसे कर्मचारियों और इंजीनियरों को निकालने के लिए नेपाल सेना के नेतृत्व में करीब 90 सदस्यीय संयुक्त टीम अभियान चला रही है। साथ ही साथ खाने का सामान भी सुरंग के भीतर पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मलबा बेहद ज्यादा होने के कारण बचाव दल रास्ते को चौड़ा करने में जुटा है। भारी मशीनों और नियंत्रित विस्फोटों की मदद से सुरंग के अंदर जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है लेकिन बचाव दल अभी तक सुरंग के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं कर सका है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदनों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जिससे भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा। और रशिया ने यूक्रेन के ऊर्जा और गोला बारूद डिपो पर नए सिरे से हमले की चेतावनी दी है जबकि हवाई हमलों में भी भारी नुकसान की खबरें हैं। और यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
2: ये है Like a Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: क्या धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, और फिल्म का नाम हीरा, जिसमें सुनील दत्त, आशा पारेख और शत्रुघ्न सिन्हा, साथ में थी फरीदा जलाल। आप सुन रहे हैं लाइक और रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बाउल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले थैंक यू कहते चले हमारे कुछ और साथी जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू शरफोन, गुड मॉर्निंग। मीना लखानी जी, स्वागत है आपका इस शो में। ज्योति जी, हर हर महादेव, स्वागत है आपका इस शो में। जयश्री जी पूछती हैं, ऋतु कल कहाँ गई थी, कौन से शो में? तो कल अनूप जलोटा जी का शो था, हम वो देखने गए थे, और उन्होंने क्या गाने गाए, बढ़िया भजन गाए, गज़ल सुनाई, गीत सुनाए, सब कुछ सुनाया, और साथ ही साथ उनके हंसाने वाले जोक्स, वो जिसके लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि शो के साथ साथ वो बहुत हंसाते भी हैं, अच्छे अच्छे जोक्स भी सुनाते हैं। तो कल एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, हमने खूब मजा किया, और बहुत सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला। और सच बताऊं, जब आप सबसे मिलने का मौका मिलता है ना, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखने को मिलता है कि जो हमें मैसेजेस भेजते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमें मैसेजेस भेजते हैं, आखिर वो कौन है, उनको देखने का मुझे भी मन करता है। तो बहुत अच्छा लगा, और हम वहां गए थे। जयश्री जी, जासू जी, स्वागत है आपका इस शो में, थैंक यू इस मैसेज के लिए। और अब अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: तो घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो साउथ हॉल ट्रैवल के पास दुबई के लिए बढ़िया डील्स हैं, उन्हें कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price
4: at all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट।
11: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: 2 days to go. UK something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
17: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
16: Conditions apply. See online for details.
2: She's back.
18: 7 days का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने. इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ अनीसा नासिर will be very much hasir.
2: Catch Anisa Nasir as she returns on the Big Show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Leica Gold and Leica Radio Greater Manchester.
19: मैं हूँ अनीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में. मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा.

0: एक नजर।
1: ये थी किशोर कुमार की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक। और प्रज्ञा कहती है कि ऋतु आज बड़े दिनों बाद ये गाना बजाया है। सच कह रही हो, बड़े दिनों बाद आज ये गाना बजाया है। और आपको बता दूं कि ये थी फिल्म एक नजर, जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म थी। और इस फिल्म को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं क्योंकि ये ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। ये इन दोनों के करियर की शुरुआती दिनों की फिल्म थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान जो प्यार की चिंगारियाँ थी दोनों के दिलों में उठी थी, एक नज़र के सेट पर ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को आपस में एक दूसरे से प्यार हुआ था। फिल्म थी एक नज़र, और जिसका कि गीत आपने अभी सुना। यह है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा आपके साथ है और सभी को कहना चाहती है गुड मॉर्निंग। और कंचन लता लाल, आप क्या कहती हैं? आप एक गाने की फरमाइश कर रही हैं। चलिए देखते हैं जगह मिलती है या नहीं इस गाने को आज के शो में।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए and 167 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 105.9 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: Deirdre, look, it's the bottom lids this time, sliding across their car bonnet.
8: Leave them be, Philip. They just claim confident.
7: Claim confident?
8: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
7: Deirdre? Deirdre? Come back here.
9: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
11: साफो ट्रेवल આટો પ્રોટેક્ટેડ।
12: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
13: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો,
14: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
12: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપરહિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં। હવે રાઇસલી, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
17: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
18: Dubai is the place. 11,
17: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
19: Danu 11, 11. Danu.
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
0: The wait is finally over.
19: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
0: Mirzapur is coming to the big screen.
20: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से।
0: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
21: अगर कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
0: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज 4th September।
20: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
22: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो। इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन लंदन। और आज इस शो में मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ, और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। आज के चिंतन में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने जीवन के बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 2 मिनट भी अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, या उनके मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हैं, या उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, या आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं, तो इतना भी काफी है। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा जाकर वहां बैठें, रोज वहां जाएं, रोज कुछ नियम करें। अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं ना, तो वो भी काफी है। लेकिन सच्चे मन से अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, तो ईश्वर आपका ध्यान पूरी लाइफ रखता है। इस बात से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूं कि आपके हर वक्त में, हर हाल में ईश्वर आपके साथ है। और यकीन मानिए कि आपके बुरे समय में तो वो जरूर आपके साथ है, लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है। सुनाती हूँ एक कहानी एक छोटे से बच्चे की। एक बार की बात है, एक बालक जिसे भगवान जन्म देकर धरती पर भेजने वाले थे, मगर वो बालक ईश्वर से जिद करने लगता है कि नहीं, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मुझे वहां मत भेजिए, मुझे आप ही के पास रहना है। मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। भगवान ने बच्चे की बात सुनी, मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, और उसे जन्म और मृत्यु की महत्ता समझाते हुए बताया कि बेटा, तुम्हारा जन्म लेना आवश्यक है। लेकिन उस बालक को यह बात कहां समझ में आने वाली थी। वो काफी देर तक भगवान से जिद करता रहा, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। पर भगवान से कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात तो मान रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं मृत्यु लोक में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं वहां तभी जाऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या वचन चाहिए। तो वो बालक बोलता है कि भगवान, मृत्यु लोक में मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप हर समय हर कदम मेरे साथ रहेंगे। ईश्वर मुस्कुराए और उससे बोले, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर बालक बोला, लेकिन पृथ्वी लोक पर तो आप मुझे नजर नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान बोलते हैं कि जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तो हमेशा तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के साथ एक और जोड़ी पैर नजर आएंगे, जिसमें से 1 जोड़ी तुम्हारे पैर होंगे और 1 जोड़ी मेरे पैर। बस फिर क्या था, बच्चा इस बात से संतुष्ट हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार भी। बालक का जन्म होता है और उसके बाद जीवन की सांसारिक चीजों में लगकर वो बालक अपनी और भगवान की इस बात को भूल जाता है। और जब उसकी मृत्यु का समय निकट आता है,
अपने आखिरी समय में पहुंचकर उसे अपनी और ईश्वर की वो बात याद आती है तो उसका मन करता है कि वो इस बात की पुष्टि करे कि क्या सारा जीवन ईश्वर ने उसका साथ दिया था, ईश्वर उसके साथ थे। वो अपनी आंखें बंद करता है और जन्म के समय से दोबारा अपने जीवन को देखना शुरू कर देता है। उसे दिखाई देता है कि हर समय दो जोड़ी कदम उसके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन ये क्या? उसने देखा कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत का दौर था तब उसके जीवन का तब उसे सिर्फ एक ही जोड़ी कदम दिखाई दे रहे थे। ये देखकर, ये जानकर उसका मन उदास हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुखी हो जाता है और मरने के बाद जब ईश्वर के पास पहुंचता है तो रूठकर उनसे यही सवाल करता है कि आपने ऐसा क्यों किया भगवान, जब मेरे कठिन समय में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरा साथ छोड़कर कैसे चले गए। ईश्वर ने उसकी बात सुनी और कहा कि तुमने कैसे जाना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उसने कहा, वैसे ही जैसे आपने कहा था। जब मैं सबसे ज्यादा मुसीबत में था तब दो जोड़ी कदमों के निशान नहीं नजर आए, तब सिर्फ एक ही जोड़ी कदमों के निशान थे। ईश्वर मुस्कुराए और कहा, जानते हो जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था उस समय तुम्हारा हाल देखकर मेरा मन द्रवित हो गया था और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए वो जो एक जोड़ी कदमों के निशान तुम्हें नजर आ रहे थे ना, वो मेरे ही कदमों के निशान थे क्योंकि तुम तो मेरी गोद में थे। कई बार हमको लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा समय आ गया है और ऐसे लगता है कि ये समय तो कभी जाएगा ही नहीं, और ऐसा भी लगता है कि क्या भगवान कुछ भी नहीं देखता, इतना दुख जीवन में हमें हो रहा है, भगवान को दया नहीं आ रही। लेकिन जब पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको लगता है कि इतना भी बुरा नहीं हुआ, आपके साथ जितना हो सकता था, और ऐसे लगता है जैसे अचानक किसी ने आकर सिचुएशन को संभाल लिया हो। यानी कि जब बुरा समय होता है और वो निकल जाता है उसके बाद जब हम रियलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि और भी बुरा हो सकता था पर भगवान ने बाल बाल बचा लिया, अचानक से किसी ने संभाल लिया। और तब ये अचानक से हमें कौन संभालता है? तब ईश्वर होते हैं जो आपको गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा विश्वास रखिए कि वो ईश्वर हमेशा हर वक्त आपके साथ है और आपका साथ दे रहा है, और ये भी यकीन रखिए कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा।

0: आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। साहिर लुधियानवी ने ये गाना नया दौर फिल्म के लिए लिखा है और जिसमें ये धुन भिटाई है ओपी नैयर ने, और मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को क्या खूब गाया है। और ये गाना आज के हमारे चिंतन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ है, यानी कि भक्ति और सच्चाई के मार्ग में कोई छल या जटिलता नहीं होती है। और ये भी इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और इंसान को दुख या कठिनाई के समय ईश्वर कठिनाई के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा उस पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके धैर्य की परीक्षा जरूर होती है लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलता है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर अपने भगवान पर विश्वास रखना है। और यही था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है, ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू बॉबी जी, आपका मैसेज मिला और कल आपसे मिलने का मौका भी मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यस, अनूप जलोटा जी के कॉन्सर्ट में आपसे मिलना हुआ, काफ़ी सालों, आपने कहा 10 साल बाद आपसे मिलना हुआ। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि पिछली बार आपसे कहाँ मिली थी। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड कल आप बहुत अच्छे भी लग रहे थे, मैं आपको कहना भूल गई। सो इट वॉज लवली मीटिंग यू, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हरीश खत्री जी, बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। शेखर आनंद जी, आपको चिंतन पसंद आया। गिरीश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने लिखा है कि मैं मानता हूँ अगर जिसने अपने आप को जान लिया वो ये जान जाएगा कि ईश्वर और हम एक ही हैं। अगर वो अपने आप को शरीर मानेगा तो जानेगा कि ईश्वर दूर है, आपके अंदर ही है ईश्वर, ये सबका अपना अपना विश्वास होता है। थैंक यू साथ देने के लिए संध्या भाव सर, महेंद्र पटेल जी, अर्जुन जी, कीर्ति जी, महेंद्र बजारिया जी, जासू जी, अमिता जी, फरीदा गुलाम अली जी, प्रकाश सुथार नॉर्थ होल से, प्रदीप सोलंकी जी, हिमांशु पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। चलिए, समय हो गया है कि चिंतन को समेटा जाए और मस्ती भरे गीतों की ओर लौटा जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.75 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: देवानंद की फिल्म गाइड से लिया था ये गाना। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये देवानंद की पहली कलर फिल्म थी जिसे कान फेस्टिवल में भी इनवाइट किया गया था, और गाइड पहली ऐसी फिल्म थी जिसे कान फेस्टिवल में बुलाया गया था। और इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग, इस फिल्म के इस गाने की शूटिंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हुई थी। और मुझे अपनी विजिट याद आ गई जब मैं लास्ट ईयर राजस्थान घूमने गई थी, और वही जगह थी जहाँ पर वहीदा रहमान ने इस गाने पर डांस किया था। और क्या खूबसूरत विजय स्तंभ है वो, और वो पूरा चित्तौड़गढ़ का किला मुझे याद आ गया। और जब आप भी जाएंगे ना वहाँ पर और उसे देखेंगे तो आपको बहुत दुख भी लगेगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ को किस बेरहमी से तोड़ा गया है, और इतना तोड़ा गया है कि उसकी नामो निशान मिटा दिया गया है। मैं इमेजिन कर रही थी कि वहाँ पर जो और पैलेसेस, जो और किले बने हुए हैं जो सुरक्षित थे, वो इतने सुंदर बनाए थे, तो जो तोड़े गए हैं वो कितने खूबसूरत होंगे ताकि उन्हें पहले तोड़ा गया। बहुत ही बुरी तरह से तोड़ कर ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी फिर भी जो भी कुछ बचा कुचा है उसे सहेज कर रखा गया है। और वहाँ पर वो कुंड भी था जिसमें रानी पद्मावती ने जौहर किया था। पूरी हिस्ट्री वहाँ जाकर सुनिए, जब वहाँ के जो गाइड होते हैं वो बताते हैं, तो मन में बड़ा दुख भी होता है, लेकिन देख कर आने वाली चीज़ है। राजस्थान अपने आप में ही बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मैं सिर्फ 2-3 सिटीज़ ही घूम पाई, क्योंकि हमारी हर स्टेट इतनी बड़ी है और हर स्टेट में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए कि आप एक विज़िट में पूरा नहीं देख सकते। दोबारा ज़रूर प्लान बनाऊंगी राजस्थान जाने का, लेकिन अगर आप भारत जाने की सोच रहे हैं और आप अगर वहाँ तक नहीं गए हैं कभी, तो ज़रूर होकर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज ये गाना आप सबने पसंद किया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि सुनील ग्रोवर लंदन आने आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। सुनील ग्रोवर को कौन नहीं जानता, उनका शो होने जा रहा है लंदन में एट ओवो अरीना वैमली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर, एंड लेस्टर में एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर। टिकट्स के लिए आप AXX, इवेंट ब्राइट और टिकट मास्टर पर जाकर अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सही कहा है आपने यज्ञेश जी, इस फिल्म में मुकुल देव ने काम किया था और अच्छे हीरो हैं, गुड लुकिंग भी हैं। सुष्मिता सेन की ये पहली फिल्म थी, लेकिन ऐसे हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिले जितने वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को मौके पे मौके मिलते जाते हैं और कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद भी मौके नहीं मिलते। इसी का नाम दुनिया है और आजकल दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। गाना बहुत सुंदर था जिसे आप सबने पसंद किया, चलिए आप सबके नाम पर किया।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो थैंक यू कहना चाहती हूँ मिसेस पे के चियांग, आप हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद। एंड शुमिला मंगर, थैंक यू साथ देने के लिए। वीरेंद्र चौधरी जी, कल आपने मुझे देखा था वहाँ पर अनूप जलोटा कॉन्सर्ट में, अरे आपसे मिलना नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आई एम श्योर आपने भी शो को एंजॉय किया होगा। और जैस्मीन हमारे साथ हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं विजय गुडूरी जी, और आपका मैसेज मैं ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ,
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। तो लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आया है जिसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, और इसे होस्ट किया है राजबधन और खुश ने। आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी and other major streaming platforms per.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Tombola presents games for you, including you, Helen. Despite the fact you add milk to your tea before removing the tea bag, you tea-making maverick, Helen. And yeah, even you, Steph, who calls a meeting at 8:30 a.m. on a Monday morning after the sunniest weekend of the year. With hundreds of games built just for you, there's fun for everyone on Tombola. Tombola, more games, more fun, more chances to win. Download the app and play now. Terms apply, 18+, gambleaware.org.
5: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
10: Exclusive TV partner Star Plus and exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
16: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
16: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
16: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: 24 days, South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111 or visit sonatours.com. .co.uk.
21: 2 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
1: कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन लाइका गोल्ड.
22: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeah Yavo. Only Leica Gold.

0: Kerala. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
1: Dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays. Scenic Swiss tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी
6: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम.
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है.
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
11: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Non-stop classics. Leica Gold.

0: गाने की धुन को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा किसी और की धुन हो ही नहीं सकती, और उस पर लता जी की आवाज इस गाने में चार चांद लगाती है। और उससे पहले आपने सुना सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज में धमाकेदार गाना, जिसे लिया था सोल्जर फिल्म से प्रिटी जिंटा और बॉबी देओल की फिल्म। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपको बता दूं कि मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूँ इस शो में, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और फ्राइडे तक मनोरंजन शो में आपका मनोरंजन मैं ऋतु शर्मा ही करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गुरुदेव गांजा, आप कहते हैं कि आपने मेरा फेवरेट गाना लगाया, कौन सा वाला था? मुझे लगता है वही होगा, तेरा रंग बल्ले बल्ले। चलिए, आपको डेडिकेट किया। और इसके अलावा विजय गुडूरी जी, आप हमारे साथ हैं और आपने बताया है कि अनूप जलोटा कॉन्सर्ट आपने देखा था लास्ट ईयर बैक थिएटर में, और अनूप जलोटा वाकई में गुड एंटरटेनर हैं। और मैंने उन्हें बहुत साल पहले आई थिंक O2 इंडिगो में देखा था पहले, और एक बार वो हमारे स्टूडियो में भी आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में परफॉर्मर होते हैं, यानी सिंगर तो हैं ही, उसके साथ वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, जो वर्क सुनाकर आपको बिल्कुल बांधे रखते हैं। और इसी तरह से मुझे एक और बहुत पसंद है, उदित नारायण जी। उनके भी गाने जो मैंने उन्हें सुना था कुछ साल पहले जब वो आए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि रिकॉर्डिंग चल रही है, इतना सुर में उन्होंने गाया कि मैं उनकी पहले ही फ़ैन थी और ज़्यादा हो गई। और मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि दोबारा उनका शो जो होने वाला है वो कब होगा और हमें उन्हें कब सुनने को मौका मिलेगा। एनीवेज, हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको भेजी ही जाती हैं, लेकिन जो हमारे साथ दे रहे हैं उनको बताते चलें कि आज कजली तीज भी है। हमारे भारत में हर दूसरे तीसरे दिन बहुत त्यौहार होते हैं, और ख़ास तौर पर ये सावन भादो आषाढ़ का जो महीना होता है इसमें तो ढेरों त्यौहार होते हैं। तो अगर आप मनाते हैं आज, तो आपको बता दूं कि आज कजली तीज है। और ये जो त्यौहार है वो विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है, यानी कि जो भारत के दिल के आसपास वाले जगह है ना, वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इन जगहों पर तीज त्यौहार कुछ ज़्यादा ही मनाए जाते हैं। इस त्यौहार में सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, और जो अविवाहित लड़कियां हैं वो योग्य वर के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो अगर आज आप कर रहे हैं तो आपकी पूजा महादेव एक्सेप्ट करें और उसका आपको फल मिले। और उसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी भी तो आने वाली है, लेकिन इस जन्माष्टमी में आपके साथ होंगी तो साथ मिलकर धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी इस बार है 4 सितंबर की। वैसे तो आजकल सारे त्यौहार दो दो दिन मनाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 4 सितंबर को है। अब यहाँ किस दिन मनाई जा रही है वो पता लगाना पड़ेगा। मैं भी लगाऊंगी, आप भी लगाइए, और आपको पता चल जाता तो मुझे बताइए, और मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फारूक जी, आप हमारे साथ हैं। और पूछ रहे हैं ऋतु शर्मा है क्या? हाँ, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ। अब रवि शर्मा जी की आवाज़ तो ऐसी है नहीं ना, मेरी आवाज़ उनकी जैसी है, तो मैं ऋतु शर्मा ही हूँ। स्वागत है आपका इस शो में। और इसके अलावा साक्षी हमारे साथ जुड़ी है, सो थैंक यू साक्षी। और कहती हैं आज मेरे बेटे का बर्थडे है जिसका नाम है संस्कार। वाओ, कितना खूबसूरत नाम है आपके बेटे का। चलिए, पूरी फैमिली की ओर से, मम्मी पापा की ओर से संस्कार, आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और अगला गाना कौन सा है? अगला गाना तो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाला गाना है, तो संस्कार की मम्मी जी के नाम कर देंगे ये गाना, ठीक है?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना पड़ेगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai like a gold.
3: Like a gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: 2 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट। कॉल 01923-227274। Book your table today.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, डी जर्नी ऑफ राम।
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
10: Exclusive TV partner, Star Plus, an exclusive radio partner, Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: Have you noticed the way fans shout at football matches?
12: Oh, wake up!
11: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
13: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
13: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
15: Hi, this is Chitranibal Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the MKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी का आवाज थी और माला सिन्हा पर पिक्चराइज था ये गाना, फिल्म आंखें से लिया था, जिसमें पंडित रवि शंकर शर्मा का म्यूजिक था और इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक माला सिन्हा ही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि कविता कृष्णमूर्ति भी लंदन आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, और ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स बुक कराने के लिए आप वेन्यू बॉक्स ऑफिस से टिकट्स बुक करा सकते हैं और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। और अब सुनवाने वाली हूँ अगला गाना मन्ना डे की आवाज में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चलिए मन्ना दा की आवाज में हमारी जितनी भी जोहरा जबिया ये गाना सुन रही हैं आप सभी के नाम पर जाता है। और अगला गीत मुकेश जी की आवाज में है और वो गाना भी बड़ा खूबसूरत है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे साथियों का पसंदीदा सॉन्ग होगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको याद दिला दूं कि स्टेज पर होने वाला जो दिवाली स्टोरी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ओवो अरीना में होने जा रहा है और ये होगा संडे 27 सितंबर को। टिकट्स आप बुक करा सकते हैं diwalistory.com पर जाकर। और इसके भी एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और देखिए ये जो गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसमें वही बात है जो केबीसी में अमिताभ बच्चन हर बार कहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि पत्नियों से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे बहस कर कर आप कभी जीत नहीं सकते। उनसे तो बस यही कहना चाहिए जो कुछ इस गाने में मुकेश जी कह रहे हैं, जरा सुनिए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.
2: गेट वेल सून क्रुणाल.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: This song welcoming Anisa Nasir ji back to Like Her Gold from 7 to 10 Monday to Friday.
1: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर के फर्नीचर .co.uk पर जाएं.
8: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
9: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
10: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
12: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
13: Bikaner wala parampara bhi.
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 0779518101.
15: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक ए गोल्ड.

0: So there you go, Rita Christina. And I'm getting so many other names from all of you. I shall try. Yes, Monica. How could I forget Monica?
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी, फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।

Yes, of course. Your favorite Chin Chin Choo, Howrah Bridge, Geeta Dutt, और मैं क्या कहूँ आगे? और कहूँ? Well, गाना सुन लीजिए ना. ओपी नैयर का संगीत और कमर जलालाबादी की लिरिक्स है. And dance away, or clap away, or tap your feet away, but enjoy it. किचन में हो, बेडरूम में हो, रस्ते पे हो, enjoy Laika Gold with me, Bali Brahmbhatt.

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: You're listening to Bali Brambat in Gold Afternoons. Gold Afternoons, proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम.
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर.
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है.
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
7: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
8: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

ए पैसा ना मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: बात क्या बात दाल भात. आई होप यू एंजॉयिंग इट एंड दिस हैज टू कंटिन्यू नेक्स्ट आवर आई गेस.
1: सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप. दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क
0: एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. आई टेल यू आई लव द नेम एंड आई लव द नेम ऑफ द पर्सन दैट सिंगिंग, लता मंगेशकर.

0: Bali Brumba.
1: Okay, so you're enjoying these wonderful songs with girls' names. इसमें बड़ी cleverly दो गाने इन्होंने समावेश किया. प्रिया बाद में आता है, जैसे कि नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो. अभी तक गाना नहीं आया, गाने में मतलब नाम नहीं आया लड़की का. नशा ये प्यार का नशा, नशा ये प्यार नानो, रहूं ना होश में दीवानो. फिर क्रॉस लाइन के अंदर आता है ओ प्रिया, और इसमें भी कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया. एंड देन उसके बाद आता है ओ प्रिया. वेरी क्लेवरली डन, एंड आई क्लेवरली चोज दीज टू सॉन्ग्स, डिडन्ट आई? होप यू एंजॉयिंग. एंड हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपेंस टू बी नन अदर देन अल्डा सिन्हा. अल्डा सिन्हा? अरे यार, माला सिन्हा. ऑफकोर्स शी वॉज बोर्न विद दैट नेम अल्डा सिन्हा. And she was born on 11th of November, 11-11-1936. Yes. And she's 90 this year in November. Wow. I love that lady. And I met her in one of the Filmfare Awards. Jab Nadeem Shravan ko award mil raha tha, Filmfare Awards mein. It was in the 1990s. And I went there and somebody said, this is one of the new singers in Bollywood. And he is in... you know, one of the TV program. Oh yes, I've seen you on television. And she turned around and my God, it's Mala Sinha. And I was so happy. Just a 3-minute meeting, but I felt so good meeting her because I've seen all her movies. Jaise ke Phir Subah Hogi, Dil Tera Deewana, Anpad, Gumrah, Aasra, Do Kaliyan, Maryada, Himalay Ki Gaud Mein. Ye sab filmen dekhkar and then you see Mala Sinha right in front of you. Wow, I felt so good. And I've chosen a very nice song from film Gumrah. Yes. So, सुनते जाएगा. ये गाना जो था जो मैंने चुना है, that was played 1 year ago. हाँ, एक साल पहले ये गाना Like a Gold पे सुनाया गया था. और मुझे लगता मैंने ही सुनाया था ये गाना. And आगे जाते हुए और भी लड़कियों के नाम, जैसे चमेली सुना है? हाँ, राधा सुना है? देखते हैं, वक्त होगा तो मैं सुना दूंगा. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइका गोल्ड. एंड वेयर इज इट अवेलेबल, लाइका गोल्ड? टेल मी. इट्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, ऑन DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड LaikaGold.com. आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू. एंड द न्यूज इज अबाउट Birmingham. Yes, Laika Radio announces Birmingham wide tomorrow, full scale DAB. Yes, that's right. We are going to be going all the way to Birmingham. Birmingham wide. Yani ke all the towns around there, Wolverhampton, and then there'll be Walsall. And all these areas around Birmingham too. So Laika Radio is not only available in Manchester. In Manchester is Laika Greater Manchester, 860th day today. And Laika Radio Midlands, it's the 419th day of Laika Radio Midlands. And Laika Radio Midlands was, I think, in July, when was it? In 2025, that's right. And after my show, it's going to be Sandy Shah from 4 to 7. And Annika would be in on Laika Radio Midlands in place of Raj Baddanji on this beautiful bank holiday Monday. Now, Laika Radio has partnered with Ashoka Samosa to celebrate World Samosa Day on 5th of September. So, Ashoka Samosa is a popular choice offering a wide range including Jumbo Punjabi Samosa, Cocktail Chana Dal Samosa, Cocktail Potato Peas Samosa, Shezwan Samosa, Potato Peas Samosa, and its signature chutney. Yeah! Listen to Laika Radio from, of course, Monday, today, 31st August to Friday, 4th September, for a chance to win a £50 Amazon voucher daily, courtesy of Ashoka Samosa. To enter, what do you have to do? Listeners simply need to send a photo. You need to send a photo with any Ashoka Samosa product. Ashoka Samosa is widely available across supermarkets and Asian grocery stores. Daily winners will be announced on the breakfast show from 1st to 5th September. And one name from each show. Yes, out of these five. Okay, now Donny Brasco will select ultimate winner following day on 8:10 at 8:10 a.m. from the day before. Okay, so we are into competition here. Ashoka Samosas, you heard the type of variations they have. Get into the competition. Go and get your photograph taken with one product of Ashoka. Yes, and we shall be choosing a winner. Not me, obviously. Like I said, you send a photograph. WhatsApp number hai hamara 07424232323. Good luck.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can fetch you up to 128.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
7: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं
9: Dreaming of paradise?
10: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
9: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
10: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
9: travel at all protected.
11: Hi, this is Arbaaz Khan.
12: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627.
13: द वेट इज फाइनली ओवर.
14: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
13: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन.
15: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से.
13: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल. पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स. जस्ट 4 days टू गो. मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th.
15: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
16: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
17: Two businesses.
18: Same town.
17: Same service.
18: One appears on page one of Google.
17: The other doesn't.
18: Guess which one gets the customer?
17: The truth is brutal.
18: The first page of Google gets the business.
17: Everyone else gets what's left.
18: So here's the real question.
17: When your customers search for what you sell, do they find you?
18: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
17: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
22: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: another song with girl's name. And मैंने एक ही घंटा करना था, लेकिन आपका डिमांड इतना बढ़ गया. अभी लोगों को मैंने कहा कि यू हैव टू अप्लाई फॉर द कॉम्पिटिशन विथ अशोक समोसा, विथ ए समोसा प्रोडक्ट, ये ऑफ अशोका एंड नॉट ऑफ ए समोसा प्रोडक्ट. इन्होंने समोसे का फोटो भेज दिया. समोसे का फोटो मत भेजो, आपका समोसे के साथ फोटो भेजो.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Yes, बहुत जरूरी है जानना कि मैंने जब अशोका की कंपटीशन के बारे में कहा, to enter, आप सुनिएगा गौर से. Listeners simply need to send a photo with any Ashoka samosa product, not of any samosa product. मतलब आप समोसे की फोटो भेजोगे तो आपका चांस नहीं लगेगा. You have to send a photo with any Ashoka samosa product, with, not of. और यहाँ पे दो फोटोज आ गई मेरे पास पंजाबी समोसे की. And I will not mention the names because I don't want to, give them publicity. And one of them is asking why my photo, so that it proves that you are with Ashok Samosa, and that's why your chance of winning. क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो अशोक समोसा को, तो समोसे के साथ आपका एक फोटो आएगा तो शायद आपको चांस मिलेगा विन करने का. समझ गए? समोसे का फोटो नहीं चाहिए, आपका फोटो विद अशोक समोसा. ओके, थैंक यू.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3545, Indian rupees 128.87, Pakistani rupees 375.59, Afghanis 88.59, Kenyan shillings 175.34, and Mauritian rupees 63.78.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at, the rates are fluctuating like anything. Gold is currently trading at £105.27 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: Leica Gold, traffic and travel.
4: Beginning with a heads up for you, many roads around London will be busier than usual due to the Notting Hill Carnival. So between Queensway Station, past Notting Hill Gate to Holland Park and throughout Notting Hill, just be aware it will be slower than usual. And closures are in place between Maida Vale and Holland Park until early tomorrow morning. The A235 Brighton Road, both directions, is currently closed following an incident between Purley Park Road and Purley Oaks roundabout. So slow traffic as a result. And the M25 clockwise is still slow following an earlier incident just after Junction 15 for the M4 interchange. I'm Brooke Glory and that's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah, like a gold.
5: Like a gold.
1: Bali Brumbut on Gold Afternoons.
5: Like a gold.
6: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
7: आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग ऑथेंटिक फ्लेवर्स टू योर टेबल एवरी डे. फाइंड जेमिन एट एशियन स्टोर्स नियर यू.
8: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Southall
12: Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel can take you there.
14: Southall Travel, at all protected.
15: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203737371. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
16: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
17: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
18: Dubai is the place. 11, 11.
17: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
19: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
17: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
20: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
21: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
22: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
23: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: देयर यू गो, चमेली भी नाम आ गया। एंड रफी साहब क्या कह रहे हैं? लता जी ने कहा मेरा नाम चमेली, और रफी साहब ने एक लड़की को पुकारा और क्या कहा, उसको बुलाया कविता। यह सो लिसन टू दैट वन। एंड नेक्स्ट इट्स गोना बी सैंडी शाह। एंजॉय कंपनी विद हिम।
1: मेकिंग समर फील बेटर, दिस इज लाइक अ गोल्ड।
0: एंड इट्स गोना बी एनिका ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार।

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Dad.
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: 073-00-9988-23 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-9988-23
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
5: जो कर्जन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु
6: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE396
7: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho ja. Happy soul.
10: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
12: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
11: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global. And Tim's Media Productions.
12: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
11: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. She's back.
13: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर
0: कैच अनीसा नासिर एज़ शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर
14: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदनस बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स
15: फ्रेंड्स मैं हूँ सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे

0: This is Sandy Shah on Gold Drive.
1: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kids-tests.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties.
8: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क
11: The wait is finally over.
12: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
13: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
15: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
16: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
15: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
16: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
17: 2 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
1: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its antlers. It looks like an ice cream.
18: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
1: Conditions apply. See online for details.
0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: अपने सज्जन सामईन की खिदमत में यानी सना सरा वेरी मच हाजिर टिल 10 o'clock। और भूलनेगा नहीं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में थीम चलेगी बल्कि दौड़ेगी। आप लोग लगता है कि भूल चुके हैं इस सिस्टम को, इस प्लानिंग को, लिहाजा आ जाइए वापस फॉर्म में। और इतने प्यारे प्यारे वेलकमिंग मैसेजेस आ रहे हैं, नाम भी शायद सारे मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी, माशाल्लाह से थैंक यू सो सो सो वेरी मच। लेकिन अब शायर तो कुछ इस तरह से कहता है कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद साहतें सागर लौट आए तो क्या तमाशा हो। गुजरा वक्त कभी लौट कर तो आता नहीं, लेकिन हाँ लौट कर आने के बाद हम नई यादें, नई मोहब्बतें, नए रिश्ते, नई पुख्तगियाँ दोबारा से जो है उस्तवार कर सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु हैज बीन सेंडिंग मी मैसेजेस इवन इन माय एब्सेंस। यू वर लाइक वरीड, यू वर कंसर्न्ड, यू वर क्यूरियस कि मैं कहाँ चली गई। मैं कहीं भी नहीं गई, आपको बता कर गई थी कि छुट्टी पर जा रही हूँ। और मेरी छुट्टी को कितनी अच्छी तरह से अश्विनी ने मेरी गैर मौजूदगी में निभाया उसका सबूत आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अश्विनी सो सो सो वेरी मच। और अश्विनी भी कहीं नहीं गई हैं, आपको कहीं ना कहीं सुनाई देती रहेंगी इंशाल्लाह। लीजिए रोज़मर्रा के सिलसिलों की जानिब चलते हैं इससे पहले कि आपके नाम माशाल्लाह से उसे बड़ी कमीनी से खुशी भी हो रही है मुझे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.75 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, या फिर SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
0: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
7: अपना बनाया तेनू,
0: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
0: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627.
9: Hi, this is Arbaaz Khan.
10: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
11: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
12: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Arbi, is waqt to mithai bhi nahi hai, halwai bhi nahi hai, lekin aankhein jo hain wo messages pad pad ke numb bhi ho rahi hain aur muskurahat jo aa rahi hai wo kisi mithai, gulab jamun, barfi wagaira se kam nahi hai jo mere chehre pe aa rahi hai. आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस को देखकर पढ़कर बेहद शुक्रिया. थैंक यू सो सो सो वेरी मच. कुछ लोग तो हिसाब के इतने पक्के हैं भाई, दिन महीने सब कुछ लिखकर भिजवा रहे हैं. जैसे हमारे शहजाद भट्ट जी कहते हैं, 4 महीने और 14 दिनों के बाद लौटी हैं आप. अरे वाह, क्या बात है. मोहब्बत करने वालों, हम मोहब्बत इसको कहते हैं. हनीफ साहब टोरंटो से फरमाते हैं, जिसके लिए ये बज्म सजाई बसद खुलूस, जिसके लिए ये बज्म सजाई बसद खुलूस, रस्म वफा भी उसने निभाई. बसद खुलूस, अब आपके खुलूस के जवाब में खुलूस नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड क्लासिक्स विद अनीसा नासिर.
2: महेश्वरी जी, शेखर जी, नीलेश जी, सोहबत खान जी, मीरा जी, तस्मिया जी, विजय गुडोरी जी, सुमिला मुंगर जी, आसिया सलीम, अरुणा जी,

0: और मुझे पूरा यकीन है कि ये जुदाई के दर्द को जो है वो थोड़ा आराम मिल रहा होगा, मुझे तो मिल रहा है, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपके भी बेताब दिल को करार आ गया। अंजुम जी का लिखना है, बात मुद्दत नहीं सुन के ऐसा लगा, मुझे लगता आज शायरी मेरी जानिब से कम होगी आपकी जानिब से ज़्यादा, विच इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर। बात मुद्दत नहीं सुन के ऐसा लगा जैसे बेताब दिल को करार आ गया। हर तरफ मस्तियाँ, हर तरफ दिलकशी, मुस्कुराते दिलों में खुशी ही खुशी। कितना चाहा मगर फिर भी उठ ना सका, कितना चाहा मगर फिर भी उठ ना सका, तेरी महफिल में जो एक बार आ गया। क्या बात है, बेहद शुक्रिया दिलीप सरूर जी, दीनी जी, भारती जी, रेणुका जी, जैस्मिन जी, निम्मी जी, हंसा वोरा जी, दिव्या जी, हैरोसी, अवतारासी जी, सुनीता शर्मा जी, शगुफ्ता जी, हिना जी, प्रदीप मुरगई जी, दिल जी ईलिंग से, हरीश खत्री जी, यूसुफ जी, इंतशाब जी, मोहम्मद अयूब चौहान जी, तोची जी, जैजी जी, दर्शना जी, उज्मा जी लिखती हैं, काने माँ ओपन दिले माँ शाद। क्या बात है, शाद कर दिया आपने हमें भी। और गीतों में क्या कॉमन है इसको भी बूझना शुरू कीजिए। दिनेश पोपट जी, वेलकम वेलकम एंड थैंक यू सो वेरी मच। इतने माशाल्लाह से नाम है, मैं साथ में लिखती भी जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है फिर भी मैं कुछ ना कुछ मिस करने वाली हूँ। एनीवेज, आज जिसने सबसे पहले हमारी थीम को बूझा उनका नाम मेंशन करते हैं, जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब। रुखसाना जी, आपका भी जवाब सही है। अंजुम जी, अमिता जी, सुनीता जी, ओम प्रकाश लाल जी, क्या बात है, कल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कल आई वॉज होस्टिंग अनूप जलोटा जी इन क्वींस थिएटर, अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के अंडर ये प्रोग्राम था, और हमेशा ही की तरह बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही कामयाब। अब जहाँ पर अनूप जलोटा जी परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप खुद ही सोचिए क्या माहौल होगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा, और क्या प्यारे प्यारे लोग होंगे ऑडियंस में। उन्हीं में से सुनीता जी, ओम प्रकाश लाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपके अलावा भी जितने भी लोग मिले, सबसे पहले तो लगता था कि मतलब सबको लग रहा था कि मेरी पिटाई होनी चाहिए, डंडा जैसे हाथ में लेकर, कहाँ हैं आप, कब आ रही हैं आप, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। रेनू जी, तोची जी, आपका भी जवाब सही है, well done.
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Right here, right now.
4: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
5: It is game on now.
4: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL and the Scottish Premiership.
5: Wow.
4: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
5: Now that is world class.
4: Stream Sky Sports on Now today.
3: Right now.
6: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
7: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.
8: Like a gold.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
11: Search is changing.
12: Customers aren't just using Google anymore.
11: They're asking AI.
12: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
11: One business, one recommendation.
12: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
11: Will your business be the answer?
12: Or the one that got left behind?
11: The future of search has already started.
12: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
11: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
14: તમે બધા
13: ખોટા પુરુષ હો તો લગને લગને કુવારા હો છો.
14: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોના ખોટા હોબોવાનું બંધ કરો.
15: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
16: We're finally going home for the wedding.
17: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
16: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
17: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
16: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
17: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
16: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
18: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
19: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
20: Taiyar ho jaiye ek yaadgar show ke liye.
19: Ram aur Sita ki kahani ab stage par zinda hone wali hai. Diwali story, the journey of Ram.
20: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
21: Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
22: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर.
23: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
24: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Birmingham, we are coming September 1st.

0: ये और बात के रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने आपके वास्ते जलाए थे। सो सो सो वेरी स्वीट ऑफ यू, जितना भी कहूँ उतना ही कम होगा। जल्दी से कुछ नाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। विजय कुनुआ जी, खास तौर पर ये गीत आपकी तरफ से मेरे नाम। वीना जी, हरप्रीत जी, हरीश रूडा जी, विजय गुनुआ जी, अंसर महमूद जी, तानिया दिलावर खान, शेर का बची, और यहाँ पर हैं मोनी जी, शकीला नेडा जी, ये वो मेरी प्यारी सी लिसनर हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँच कर मुझ तक जो है मेरी गैर मौजूदगी में भी मैसेजेस पहुँचाती रहीं। लव यू, थैंक यू। रोजी जी, गीता हर्ष जोशी जी, जहीर खान साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 375.6 Pakistani rupees, 128.9 Indian rupees, 166.5 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now.

0: ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। आप कहें और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं, वादा करके गए थे, चलो थोड़े से लेट हो गए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। जवाब आज की थीम को लेकर दिलीप सरोज जी आपका, दिनेश पोपट जी, गीता हर्ष जोशी जी, नीलेश जी, सुमीला मुंगर जी, बीनी जी, बिल्कुल सही है, दक्ष शर्मा जी, प्यारे से मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा जी लिखती हैं, किसी से रोज मिलकर बातें करना दोस्ती नहीं बल्कि किसी से बिछड़ कर याद रखना दोस्ती है, और वो आप लोगों ने खूब निभाई है, बेहद शुक्रिया। और अश्विनी के लिए भी बहुत प्यारे मैसेजेस थैंक्स के भिजवाने के लिए आपकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। नवीन लुधियानवी जी, स्वागत है आपका। संध्या भावसे जी कह रही, कल मैं भी तो आपसे मिली थी। जी जी जी बिल्कुल, आप भी हमसे मिली थी, आपने तो सबूत के तौर पर तस्वीर भी भिजवाई है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गीतों में आना आओ आ कॉमन रहा। अब अगला गीत हमें और आपको ले जाएगा खबरों तक और खबरों के उस पार। ज्यादा मत करवाइएगा इंतजार, बहुत इंतजार करवाया हमने तो उसका बदला मत ले लीजिएगा आप। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत लेकर पूरे 10 बजे तक मैं हाजिर रहूंगी, मी माई सेल्फ अनीसा नासिर आपके खिदमत में पेश आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: दिस इज लाइका।

0: and that we can tackle the very high levels of drug deaths in Scotland, which are completely unacceptable.
1: Donald Trump's vowed retaliation for Iran strikes on American bases in Jordan. The two countries have traded their first attacks in a month. And a two-day festival honouring Dolly Parton will be held in Nashville and London next year. Dolly Fest will be staged across two consecutive weekends. From Sky News, I'm Fada Silver.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
3: भई मौसम ने तो अच्छे अच्छों को नचा दिया, हम जैसे गर्मी लवर्स भी तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गए, लेकिन now it's getting better. आज लंदन में will be dry with mostly clear skies, although few patches of cloud जो हैं इधर उधर से जरूर भटकते हुए आएंगे, with the lows of 12 degrees, not looking so bad. मैनचेस्टर में highs में दिखा रहे 19 degrees और lows में temperatures रहने वाले हैं 14 degrees Celsius.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ ओपरा ओपरा सा लगा, अब तो लगता है कि मैं कभी कहीं गई ही नहीं थी. आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली वर्ड्स. पूरे 10 बजे तक का साथ और बहुत कुछ लाई हूँ आपके लिए.
2: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
2: Leica. This is Anisa Nazir with The Big Show.

0: बड़ी मस्तानी है मेरी महबूब और बड़े मस्ताने हैं मेरे महबूब लिसनर्स। उसने वादा किया था आने का, उसने वादा किया था आने का, रंग देखो गरीब खाने का। क्या बात है आपके मैसेजेस की। प्रीति वॉल्टर जी, अली जी अटलांटा से कहते हैं, ये नहीं है कि कानों से दूर तो दिल से भी दूर। वी वर जस्ट गिविंग यू सम स्पेस फॉर वट एवर रीज़न यू टुक टाइम ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज नॉट एनी पर्टिकुलर रीज़न टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। लेकिन आपके कंसर्न का बेहद शुक्रिया, क्योंकि इतनी लंबी ब्रेक पर जाने पर ऑब्वियसली मैं भी आपकी जगह हूँ तो यही सोचूँ कि सब खैर तो है ना। रब सोने का बड़ा शुक्र है, सब खैर, सत्ते खैर जिसको बोलते हैं ना। बस ऐसे ज़रा शरारत करने को दिल चाह, हमने सोचा ज़रा थोड़ा दूर जाकर देखें, मोहब्बत कम होती है ज़्यादा। लेकिन बात फिर वही आती है कि जहाँ मोहब्बत होती है दोस्तों, किसी के आप कितने भी करीब क्यों ना हो जाओ, अगर उनको आपसे मोहब्बत नहीं है, अगर उनको ये भी पता है कि 4 महीने आप ऑफ हैं और फिर भी वो आपको एक्स्ट्रा टाइम कभी ना दें, तो आप क्या सोचेंगे। चलो तुसी ज़रा सोचो, मेरे तो जो मन में आया मैंने कह दिया। भाई मन की करेंगे ना, आज आज मन डे है ना।
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.7 इंडियन रुपीस। और भूलिएगा नहीं कि एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
0: और ये कहते हुए, ये जानते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे नहीं भूले, तो आप इस क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को कैसे भूले होंगे कि जिस तरतीब से हम प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में उल्टा पुल्टा शामिल रहता है, चंद अल्फाज में आप तक पहुंचाती हूं और उसके अलावा पंजाबी तड़का भी, रेडी फॉर दैट। तो चंद अल्फाज में पहुंचाऊंगी और आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा गीत है। सजदों से रोके प्यार की राह, कांटे चुने। सजदों से रोके प्यार की राह, कांटे चुने।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Anissa Nasir with the Big Show. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Thomas.
3: Taxi!
2: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410. Saho Travel, Auto Protected.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: हाँ जी, आपने भी कसम ली। वैसे कहते हैं कि कसमें जो हैं वो झूठे खाते हैं। खुदा के वास्ते झूठी मत खाइएगा कसमें, खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कसमें। मुझे यकीन हुआ, मुझको एतबार आया कि सांस हो या साल मेरा वक्त सारा आपका, सांस हो या साल मेरा वक्त सारा आपका, मेरी पेशानी में रोशन है सितारा आपका। आग जिंदा रह नहीं सकती अगर ईंधन ना हो, यानी नामुमकिन है मेरे बिन गुजारा आपका और आपके बिन हमारा। लीजिए भाई, जहाँ तक हमारे उल्टे पुल्टे का ताल्लुक है, अरे सिर्फ और सिर्फ एक सही जवाब। प्रीति जी बेल्जियम से, वेरी वेल डन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और मैं जिनको समझ नहीं आए उनके लिए दोहरा देती हूँ, सजदों से रोकेगा प्यार की राह कांटे चुभे। इतना पॉपुलर गीत है, आप कैसे नहीं बूझेंगे। फातिमा जी बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मीनाक्षी ब्रह्मपट जी कह रही हैं कि मैंने पहले घंटे में थीम का जवाब भिजवाया लेकिन गलत ग्रुप में। अरे आप गलत ग्रुप की बात कर रहे हो, लोग गलत नंबर पर, गलत तो नहीं कहना चाहिए, सही मैसेज भिजवा देते हैं और फिर बाद में जो उनका हाल होता है ना मत पूछो।
0: ये है Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
2: जी हाँ दोस्तों, साउथ ऑल ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। दुबई के नाम पर मुंह पर पानी, मुंह में पानी भरने की भी मुझे इजाजत नहीं है। सो कॉन्टेक्ट कीजिए, आप जाइए साउथ ऑल ट्रैवल टुडे ऑन 0208574 8410। साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Making summer feel better. On the Leica Radio Network.
2: पन्ना लाखानी जी, रमेश जी, थैंक यू। जगदीश जी, सपना जी, फरीदा गुलाम अली जी, बेहद शुक्रिया, थैंक यू। गजल स्टेशन शुरू होने वाला है, डू यू नो?

असी की पेस बटाए यार तेरे मिलने नू। ये गीत खास तौर पर हम नाम कर रहे हैं जनाब शहजाद साहब के, और वैसे ये चॉइस नहीं थी आज के पंजाबी गीत की, आपके कहने पर मुझे शामिल करना पड़ा। और ये समझें कि तलाफी कर रही हूँ मैं अपनी गैर हाजिरी की।

0: दिल दा शीशा साफ ते नहीं ना, दिल दा शीशा साफ ते नहीं ना, फिर तू कीता माफ ते नहीं ना, तू क्यों देवे हिजर सजावां, तेरे हाथ इंसाफ ते नहीं ना। और मैं इंसाफ करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ भाई। आज हमारे मिस्ट्री गीत को टूटे फूटे नहीं उल्टे पुलटा कहना चाहिए, टूटा फूटा क्यों कहूँ। प्रीति जी ने बेल्जियम से सबसे पहले पूछा, फातिमा जी आपका जवाब भी बिल्कुल सही, उल्लास जी टोरंटो से, और दिलीप सरोज जी आपका भी जवाब एकदम बरोबर। कहती हैं कि जब आप नहीं थी तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि खुदा ना करे आप खैरियत से नहीं है, मैं तो सोचा था हमारी दीदी एकदम झक्कास। I really like that. और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी वो गीत बहुत पसंद आएगा जिसे प्रीति जी, फातिमा जी, उल्लास जी और दिलीप सरोज जी के अलावा किसने ना है बोझा है। तो आइए सुनते हैं, सुनवाते हैं ब्रेक के उस पर, चलिए जी।
1: This is Anisa Nasir with the big show. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Jasmine.
3: Oh, terrible weather.
2: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
4: See ya, good luck with the interview.
3: Thank you, bye.
2: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून, टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
9: Budget tight, par brand ka impact bada chahiye. Leica Radio aur Leica Gold laaye hain aapke liye perfect package. Radio, digital ya event, sab kuch milega customized. Jaldi kariye. Call now. 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
1: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 p.m.

0: ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा।
1: Like a Radio Network, broadcasting across Greater London.
0: और अब ये प्यारा सा गीत, ये भी मेरे किसी लिसनर ने मांगा, महेंद्र जी शायद आपने सुनवा रही हूँ। गो के आज फरमाइशी डे नहीं है, लेकिन आप इतना प्यार भिजवा रहे हैं, मैं एक फरमाइश भी ना सुनवा सकूँ तो क्या फायदा ऐसे प्यार का, है ना। गुड इवनिंग।

0: आज की रात लंदन में मोस्टली क्लियर स्काइज, शायद सितारे भी दिखाई दें और कहीं कहीं बादल के टुकड़े भी घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। लोज में दिखा रहे हैं 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्रेटर मैनचेस्टर में 19, हाइज में और लोज में 14 डिग्री सेल्सियस टुनाइट।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथ ऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410. The Nissan Nassir.
0: Sit back, relax, or enjoy the smooth tunes in this final hour. Final hour? अच्छा आज के शो का पहला शो छुट्टी के बाद, मैं कहीं गई थी क्या? Really?
2: Like
1: gold. Let's return to the biggest hits. Back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. This is a Nissan Nazir with the big show.

0: इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोलें, जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने ना दिया। तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया। एक दो रोज का सदमा हो तो रो लें फाकर, हमको हर रोज के सदमात ने रोने ना दिया। रुलाया भी हंसाया भी, कभी मंदिर कभी मैकदे में पहुंचाया भी, वन एंड ओनली अनूप जलोटा जी ने यस्टरडे एट क्वींस थिएटर। थैंक्स टू अरुणा चोपड़ा और सुधीर चोपड़ा एंड फैमिली, अनूप चोपड़ा फाउंडेशन के अंदर। What a beautiful evening that was. बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिले, सबसे मुलाकात हुई, गल बात हुई, दिल खुश हो गया। बहुत सारी डांट भी मिली बहुत सारे लोगों से, कहाँ हैं आप, कब आ रही हैं, लो जी मैं गई कहाँ थी। अब ये मुकेश जी को लीजिए, मुकेश शाह जी कहते हैं गुड इवनिंग निशा जी, वेलकम बैक, इट्स सो नाइस टू हियर योर वॉइस अगेन, इट फील्स लाइक ए लाइफ टाइम अगो व्हेन वी लास्ट हर्ड योर, ओ विदाई, प्लीज डोंट लीव अस अगेन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, होप ऑल इज वेल विद यू एंड योर लव्ड वन, सेंडिंग यू बिग हग्स, मुकेश जी फ्रॉम क्राइडन, लव यू टू। आप सबकी मोहब्बत है जो हमें कहीं टिकने नहीं देती और हमें लौटा कर यहीं ले आती है।
1: Lisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: वन ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकता है 128.7 इंडियन रुपीस, भूलिएगा नहीं, एक्सचेंज कीजिए इन ब्रांच में ऑनलाइन या फिर एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के जरिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.
2: Like a gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
10: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
11: You know how fans shout at football matches?
12: Oh, wake
11: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: Calling all samosa lovers! Leica Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening, get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Leica Radio.
13: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: और हमारी इस वीक की आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक वन एंड ओनली माला सिन्हा जी। उन्हीं पर पिक्चराइज ये गीत हमने प्रोग्राम में शामिल किया, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये दिल का दर्द मेरे घर मजीद हो जाए, मेरे वजूद की फिर मुझको दीद हो जाए, खुदा करे तुझे बेचैनियाँ मैसर हों, तुझे भी इश्क किसी से शदीद हो जाए।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये रात है प्यासी प्यासी और प्यासी ना गुजर जाए. हाय हाय, इतने तरले, इतनी मिन्नतें. साजिद रहीम साहब फरमाते हैं, बराए नाम तेरे इल्तिफात के सदके, बराए नाम तेरे इल्तिफात के सदके, खुला ये हम पे के टुकड़ों पे कैसे पलते हैं. क्या खूब कहा और क्या खूब फरमाते हैं साजिद रहीम जी. और ऐसे ही एक बहुत प्यारे से शायर हैं जिनके कलाम को अक्सर व बेशतर मैं प्रोग्राम में शामिल किया करती हूँ, और ख़ास तौर पर उनका कहा वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, आप सभी उससे बखूबी वाकिफ हैं. डॉक्टर फखर अब्बास, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए भी दिल को कुछ होता है. हालांकि यही फ़र्ज बनता है, यही हमें कहना भी चाहिए, लेकिन इतनी जवान मौत, इतने टैलेंटेड इंसान की अचानक मौत अफसरदा नहीं करेगी तो और क्या करेगी. मौत तो चीज़ ही ऐसी है, अपना हो या पराया, दिल उदास हो जाता है. और ये जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, डॉक्टर फ़खर अब्बास जी का, बहुत चाहते थे सबके, उर्दू अदब की बेशुमार खिदमात उन्होंने जो हैं वो की हैं, और उसके साथ साथ जितनी मोहब्बत बटोरी, शायद इसीलिए कि बहुत जल्दी चले जाना था, और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जो है बहुत सारा प्यार लोगों से लिया अपनी बहुत ही प्यारी शायरी के ज़रिए. जैसा कि मैंने कहा, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है. एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है. बचपना, कमसिनी, जवानी, आज. बचपना, कमसिनी, जवानी, आज. अरे तेरे हर दौर से मोहब्बत है. ये हूँ मैं और ये मेरी है तस्वीर, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है. डॉक्टर फ़खर अब्बासी, आप पर हमेशा फ़ख्र भी रहेगा और आपसे मोहब्बत भी रहेगी.
3: ये है लाइका गोल्ड. बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
0: लाइव अक्रॉस ग्रेटर लंदन विद द बिग शो.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
0: One performer, countless personalities, a whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
1: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
6: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.
9: Roop tera mast.

0: कि यार मस्ताना भी है, आपका दीवाना भी है और बेखुदाना भी है. पता नहीं क्या क्या अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं. आपकी बेपना मोहब्बतों के बोझ तले ऑनेस्टली दिल चाह रहा है कि बस इसी तरह ये बरसात होती रहे, आपसे मुलाकात होती रहे, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस. अब जैसा कि गुरसरनजीत जी, रजनीश जी लिखते हैं, और साड़ी रौनक वापस आ गई लाइक अ गोल्ड दी रौनक. सो वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. रौनक आपके दम से हैं, इन्हें बनाए रखिएगा.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 375.8 Pakistani rupees, 89.3 Afghan Afghani, 128.8 Indian rupees, 166.4 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £105.20 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Like our gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: Like our gold.
5: From Lollywood with love, with Anisa.
6: Anisa.
0: आज के लिए इजाज़त चाहूँ, बशर्ते ज़िंदगी कल मिलते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.

0: और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खफा नहीं होंगे, खुश होंगे और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करेंगे, बहुत सारी गल बात करेंगे, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत सुनवाऊंगी। मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का जो चुना हुआ म्यूज़िक है आपका मुंतजर होगा, उसे ज़रूर सुनिएगा, बहुत चुने हुए गीत होते हैं। और कल तक शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सुने दे हवाले।
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: पल भर के लिए
6: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 पीएम एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 पाउंड्स। बुक टिकट्स एट herorts.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203737361। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
14: Four beers, please, garçon!
13: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
15: Ye hai
16: Leica Gold.
2: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.

गया मेरा वो सब जाहिल बन गया सालों में तो साहब बन गया सालों में तो साहब बन गया।

0: Mica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
2: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030373633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स Your travel mantra.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place.
9: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties.
11: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
0: वन परफॉर्मर
2: टीवी के सामने प्रोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी
3: काउंटलेस पर्सनालिटीज
4: जिंदगी बर्बाद हो गया
5: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट
6: फंक्शन रखा हुआ है
7: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026
5: 29th October Ovo Arena Wembley London 31st October Mattioli Arena Leicester
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati From Rinku Bhabi to brand new surprises Experience Sunil Grover live on stage in the UK
5: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions
7: Supporting mental health and well-being awareness Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS
5: For more information contact 07585 801 801 Official radio partner Leica Radio Network
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
5: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
11: Cutthroat Ke Khiladi.
12: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocenter.org.
13: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

0: biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. This is Like a Gold.
1: September महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओबोवानो बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो
4: पटेल भाई जानमा।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
10: ताज़ा करें अपनी यादें। Leica Gold।

0: ये है Lyca Gold.
1: जिंदगी बर्बाद हो गया.
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Lyca Radio Network.
1: मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties.
8: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.